kulumka phungka ham jotan phaising kha ka ham te hamjang ya phari tauk chang jago tini ni phungni kak borog fm panda panda oi ngi tung sara sa point do kha ke 101.6 megahertz ang tung tini narok ni taku kishur apung ko sang jorawo phaide ke khabang taku te bo kusum apung ko sang jorawo lopung hai ke ba churi mungni रसाबुंगने बिचिंग तीने होती निनी अपुंग को चंग जोरानो लामचुक लायने लॉप मुंग है के बाद सूरी मुंग नी को छाना थांगा की आमा संगत्रा मानुनो फाडी अपुंग को चंगो लॉप लायने सूरी लायने आमानो कारीले इशंसारो शाबोतों

रंगमुंग सीमुंग तंखा के सियार खालेदी जे नरगो जुदा जुदा हुकुम मकुमु कानमुंग चुमु जुदा जुदा ककथाई दाल विदाल लुकुरुम बिसिंती फानो तंकोचांग तंगनानी बागिने तंकोचांगनि बिसिं तंगनानी बागिने जि चायतक हुं पारा कैसा नुकुं कैसा नक कैसा हाय जतन ताखु बुखु जं नुगो जुदा जुदा जरव जुदा जुदा लुकुरुम बिसिं कक फेलाइम बिनी वानसुमुंग जुदांगमुंग अबंतीनो अज्जे तंकचांग देरामुंग बुनुग जागो अतंकचांगनो मथांग नारगनानी के हायंग दांगे तंकचांग ने बिशंक्ति जतनो थांगे तंगनानी गांगे निनी वानसुमुंग नंबो शेयर खलाई मानो 232-6253 कॉकडुक नंबर मोबाइल यूजर 0381 और कुट नंबर नानी ताप होती अब निशकांग कमांग ताकुते बुखुचों हानुलबुई रचामों

0: लायानो भारत युरुपाय पियोगजाग बानियानि क खालायमानो रगै कायसाकरा खालक संसाय तिसावान हनिबो खाका जागो मन्त्री बक्रक नरेन्द्र मोदी भारतनि तंगनाय रगनि बखा कक नारगनानि ककबो तंगो आबनो कारिबो किसासक नांगुगमा बाबाय क खालायमाबो मुंसय एंगानो हनिबो खाका जागो आगरतला हापांनि मेडिकल दों नकतनि तांबेखरे फुवारनावो केन्द्रनि साखामतै नुखुं हामग्राय नायखुं खक नैरा स्निजि थाम रोजाग ब्रैजि दक रासायरांनि गसिमं रोखा होनाय साखा मन्त्रियकरा प्रफेसर डाक्टर मानिक साहा मन्त्रियकरा साखा आबबाय आगरतला हापांनि मेडिकल दों नकतर नै साय नैजि दक नैजि स्नि रोंबिसिनि सिमि एमबिबिएस कर्स तैब कायसारा आचुकथाय तै पिजि कर्स तैब कायचारि थाम आचुकथाय बांग्रि मानानो बसाखा ओ मेडिकल आचुकथाय बांग्रेजाकमाबाय हास्ते हापांनि तै हापां फातार मेडिकल दों नकतर एमबिबिएस आचुकथाय बांगै ओंगानो कायबारा बाचि ब ओ साखथारमुंनि बागै मन्त्री बक्रक नरेन्द्र मोदी तै केन्द्रनि साखाम नुखुं हामग्राय मन्त्री जेपि नाड्डानो हामबाय याफारका हास्ते ओ नांगमानि सुख पेट्रल डिजेल खातिजाक तंग होनै साखा मन्त्रियकरा प्रफेसर डाक्टर मानिक साहा लुकुरक्न मन्त्रियकरा कबकमुं नारखा वानायावै तंगनाव पेट्रल पाम्पनि नांयावु यागबारा पेट्रोल नाहारिया तंगनानि कबक मुंना रखा ब नेशनल टेस्टिं एजेन्सि एबा एनटीए साखा नीट यूजि नै साय नैजि दक आमजग मुं बोसकां नैजि साजुन तालो ओंगानो हदालामनि बोखाकतै आमजग मुंग आचुक नायरक तै माफासंन एनटीए अफिसियल चेनेल पैतु जानानि कयमुं नारखा आमजगमुंग आचुक नाय स्रोंनाय रग बोसकां जुन तालनि चिब्रै सालमारिनि बिसिं आमजगमुंनि एडमिट कार्ड मानबायानो केन्द्रनि रोंमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान साखा बोसकां बिसिनि सिमि निड युजि आमजगमुं ओएमआर रायदानो सलायै कम्पिउटार रायदातै आमजगमुं नाहार जागानो त्रिपुराव कताल इनकाम टेक्स रिफर्म्स नै साय नैजिबा सामंग फोनां जाखा आबनि मुं रोजाखा प्रारम्भ नै साय नैजि दक आबनो तुयमिया आगरतला इनकाम टेक्स भवनो कायसा हजाक मुं ककलाम सालाइमा पान्दा संसा जाखा पान्दानो चेंगै रिखाय यागबारा इनकाम टेक्स कमिश्नर अमित कुमार पान्दे कक नारकनाय रक्षाखा इनकाम टेक्स के रं 1961 नर सलाय जाखा इनकाम टेक्स रिफर्म्स नै साय नैजिबा इनकाम टेक्स के रं नै साय नैजिबा न केन्द्रनि रां मन्त्री निर्मला सीतारमन नै साय नैजिब्रै बिसिब संसद बाजेट पेश क्लाइमा जराव खुर्जामानि आबताक्लाय बिसिनि एप्रिल पुइला सालमारिनि सिमि सामंगब नांजाखा अबाबैनतै कक्लाम सालायनानै थांगै कथाजाग इनकाम टेक्स कमिश्नर रूपक कान्ति भट्टाचार्य साखा इनकाम टेक्स के रं 1961 ते इनकाम टेक्स के रं नै साय नैजिबा निबिसिं गोबां फेलायमुं गोरै पिया इनकाम टेक्स केरं नै साय नैजिबा तंक संलुकु रकनि बागै लायते सात्तै क्लाय क्लाय जाखा आकाशवाणीनि बिसि चुकुचि पुंमानर गै हाकतर बाय बाक्सा आकाशवाणी आगरतलानि चेतन बाय मिया सुकान्त एकाडेमी व क्लासिकेल रिजापुं पान्दा संसा जाखा पान्दानो चेंगै रिखा सालथां त्रिपुरा हांखो नायकलफां डक्टर विशाल कुमार आबनो कारिबो पान्दा मानजाखा जि सि एस टि आगरतला हाबानकनि यागबारा कमिश्नर सामुएल एस बाइफे कक नारकमा व हांखो नायकलफां आकाशवाणीनि सामंनतैयै बलायखा पान्दा व गीतार तामकरों पंकज कुमार दास टबला तामकरों देवज्योति दासगुप्त मानजाखा सालथां त्रिपुरा हांखो नायकलफां डक्टर विशाल कुमार साखा आगस्ट पुइला सालमारिनि सिमि थामजि सालमारि जरा हास्तेव लुगुलेखामुंनि पुइला बेरेम संसार जागानो मिया आगरतलाव ककतुमा थुंनाय रकनि थुम ब साखा उलनै बेरेमनि लेखामुंनि सामुं बोसकां बिसिनि मार्च तालनि बिसिंगन पायरो जागानो उनकौटि हांखनि हांखर नायकलफां तमाल मजुमदारन हास्ते हापांनि आलायदा तांग्रा आचुकथायो सेजाका ब आमसाय हामग्राय नायखुंनि आलायदा तांग्राते दागिफांनि बारजाव तंगानो आबनो कारैबो ब हरबोथारनाय नायखुंनि दागिफां ओंगै यागबारा बारजा यासागानो आमसाय हामग्राय नायखुंनि दागिफां मेगा जैन उनकौटि हांखनि हांखर नायकलफांनि आचुकथायो सेवै रहर जाखा ताबुक नबारतिबानि ककतुमा बोसकां दाम नैजिब्रै हास्तेनि जत्त' हांखर नबारवातै वावै मानो होनै हजाक लायखा नबारतिबार नायखं तिनि सालनि साखानि तुंमारि थामजिबा डिग्री सेल्सियासनि गानागिनि तंगै मानो तिनि आगरतलाव आइजुग खामानि तुंमारि तंमानि 22.2 डिग्री सेल्सियास फुं दाम बातामै सति थामजि जरावातै बाखा 3.2 मिलिमिटार ककब्रक बाय ककतुमा परिमं ताबुक जराते अरन पायखा उलनि ककतुमा आवाय ओंगानो सानजानि दामसिनि दामै सति ब्रैजिबाव
1: আকাশবাণী আগরতলা শুরু হচ্ছে অভিজ্ঞাপন।

0: रखनाइथुङ्गो 101.6 मेगाहर्ज एफएम उज्यन्तजराव स्टुडियो आसुक सकाङ बिनोता गैचिङ खापङ याख्राइ पान्दाओ नरकनि सिजा कक्लब र खनालाय दङ कक्दुक दे हिंके फाइदि अजराव कक्दुक या सखनाय कक्दुको स्वागतम हेलो हेलो फुंकाहाम लामसोगो
1: बायनानाबो फुंकाहाम दलाचन
0: द सिने मुरिगाडे ताकु ब्रिजेस ना ओंखाय नरकब नरकनि सिजा कक्लब रक दंखाके नरक साहरि मानो साहरनानि बागै जिनरनि कक्लब नाम्बार ओंखा 0381-232-6253 अ कक्लब नाम्बार नरक साहरि मानो ओंखाय फादियो जराव कक्लब तांसा नरक न साहरि खनार वानो कक्लब नि मुंखा वान सुगु अ कक्लब सिनाय ओंखा बरम गोनां जोग शेफालि देबबर्मा याक्षि याग्रा लामा कुपलुं आं काबजाग बोखानि लामाव मुख थांनि मुख दोरै थंगार' सालफियो ग्या नग दगार आं हाथि जाति फुनांगै दाल विदाल मानै सेगै तुबै मानलिया कायतर दियान याकारै मखल फियगदि सेलेंमा सिंसानि बहगो

हामजाकमा आचाय सितुन हायुं तुई सुरु सुरु बहर निनी लामा वो बवई रनाई तंग थकनी खुम्बार फिया नगले सासुं थं थं जाति गुरै मोना गेजारा अनरग्न सावै खानारका बरं गोनांजोग सेफाली देवबर्मानि सैजाक दांसा गग्लब खाख्लायाव नरक खनाथक जाबायखेना ओंखाय दाखोबोखौ मारा थाखिथिं संजतन नरक दमं न नरकनि सैजाक गग्लब रग अजारा अनरग सानानि मुचुङै दंखा सैजाक दङ ओंखाय नरक आंबाय सेयार खालायमानावतै जतु खनाय दंनाय मारा खिथिं संनांगौ नरक खानारि मानाव ओंखाय गोबां मा दङ जों गग्लब सैगोन रग लेखा बाया सैयो दे दाबुकनि जे गोदाल गोदाल आजाय संरगनि बेरबो गोबां मा दङ गग्लब सैना हामजाक मानि हायादाना गोबां मा लुकुरग्न जों सैमानि बखनाव आव जों सैमुंनि गग्नाव साना थांखे साबाया सैमुंनि सिनिमुं असंसार जतनिसलाय गुजुग दंना हाय आं मानसुगु दामनि हिंखे सैमुं गोलाङै जों थाङै मानखाखाय कुसुं कुसुं आ सैमुं बिजाबनि सिकांग तरगो बिजाब दिख्लायै गोलाङै मानखाखाय आ बिजाब फियाबा कुसुं कुसुं न गोथाङै दङ सिनिमुं गोथाङै दङ साग मांसे कमरै थांफान सागनि एलेम सागनि सुवार जे सैमुंनि बिसंथै कक्लब सैग्रों ओंथनाबो गथमा सैग्रों ओंथन एबा गथमाबो सांथं गथमायाव ओंथं सैग्रों रगनि बुमुं जे तरक मानि आबौ फियाबा थैप्लाया सिनिमुं होनै मानो

0: जरा उचंग खना तो थोक रचा मंग खना लाग गया फायदी कोक तो क्या सकना ही कोक तो को शाबतों हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: फुंका हाम लाम सोगो
1: फुंका हाम लाम
0: सोगो दो दो शिने मुंगे के डे साबुंग का
1: राजा
0: पुण्य से तो जीत दे परमात्मा राजा पुण्य तो कुछ शत्रु जीत
1: ini ni kapan yak repandawo de koglong koktang sanai rono belakin hambai urang ngomak ik natok natok ini share kemen bagai ke angke to koglo koktang to ang
0: sudah sih
1: rono saya angke sudu kos mabasa simi sauta
0: kotho mabasa angke to sing oro shape raja kya ke pia ba ang rono sanai to mung nun kotho mabasa kebang marok sijak tong kangke ni ni नंग चीनी आकाशवाणी वो भाई मालाई भाई दी गए नोनो जुदा खाई नो शेप रजाक नहीं पर नंग वैसे पन अपना तो क्या
1: अंके परोक्षा बिकोलोंगो से आं
0: हाय पर हिमे बाहे के भाई नंग बाहे के इनको भाई
1: अनि वो अंग देखो समझो समारोह का करों के अनि आगे वो जे नाना था वो साइकिल लमनी nang sauta ye ini baike white sam white resort terang zakta
0: a hunke to nung nung bikolang go nung sak chugya to hin saka tamo chugya mane himui maya yak ko maya batamo
1: anki mokol
0: a mokol mokol nu gya na hai bano sawi manu na hunke nung to mung no नंग सानानि मुचुंगि न तंखा चिनि आकाशपानि बायखरंगना मुचुंगि तंखा कय नंग बरख खरखसा सङनो तुबै फानो फाय

हा के नरक बो नरक नि सिजा कगलो ब्रक तोंगै तोंगा के अजरावो आं बाइक रंगै साहरि मानो जिनरन कक दक नंबर नका 03812326253 हा के अजरावो रचा पोंखानो हाइते तांगसा खाना लायनाय खाना तो रचा मंग सारा सा पॉइंट ऑफ मेगाहर्ट्ज एफएम उजेंदो

हजुरआव रोजाबनि फारसे थांलाय फैनायनो खोनाथथक रोजाबमुं नरकनि बागै हजुरआव बेलायनो खोनाथथक रोजाबमुं खाख्लाय नरक जतन खोनाथक जागानो अ रोजाबमुं न खोनाय दंदि दे लगे दंदि पान्दा पाय साग जरा

0: गेजों गग्लब खोनालाय दङ नरकनि सेजा गग्लब रग्न ओंखाय गगदुग फायजाग नायनाय साबो दं गगदुग हेलौ हेलौ हेलौ दिबर गाहाम लामसोगो खोनाओ मोरै मोरै दसादि
1: Makam tu ikat ni, kalau nak sel music.

0: 10 साली
1: मी असो माका तो एक अकादमी वर क्लासल मी एकदमो 15 स्टोरी आहे बा ती असो आं
0: खनाली आता कोणीनी खोरांग
1: वर 15 खांगवी मामी मांगर मामा खांगमा से ओरो
0: नोंग बर'नि फायमानिबा दाखु ई पांडा तो मिया 6:30 रोकन खना वाते नि इंगे किशा अलर खा हेलो ताकुंग नो बलाके नागर सांजो ओनी नि खोरां मुरी मुरी किसा काम के खना यानी बागे अंकाय बाक्सा तो मिया थंग बाई के ना नाई बाई के ना हिने खाचोंगो के बाक्सा तो वाते नौकर ना नी जोरा एबा पांदा हंग ना नी जोरा उनो वाते रोबो वाई रखा बा अंकाय अबनी बागे बाक्सा काय फाई माया रोको नंग खना अंका फादियो जोरा उको बुग्या चाकिने शाबतों हेलो हेलो हेलो साय मालिया शाबजा निंखा खनाय मानलिया अंकाय जों खाबंग्या खनाय पांदा वो कोकलोप जों खोनालाय दङ नरकनि सैजा कक्लब रक गोजोराव आं हायनो हायदे तांसा नरक न कक्लब सायखाना रवानो दाबुकनि कक्लबनि बुमुंखा फिया कक्लब सानानि सिगां जोराव कक्दुक फायजाक नायन साबादं कक्दुक हेलो हेलो
2: हेलो
0: दिपुर गाहाम लामसोगो
2: दिपुर गाहाम बुखुक
0: ननबु ननबु दिपुर गाहाम सिनेमुरि गादि साबुंखा
2: आं सोनाय सिरिनि बिलुनिया
0: बिलोनिया ने शाहरी तो ना मुंग के ताको
2: बिलोनिया स्पेन करना
0: नहीं नी नी मुंग शागा दे ताको
2: हाँ नहीं बोलूँ कहाँ ओनिल त्रिपुरा
0: ओनिल त्रिपुरा ना इनके दोनों ने शिजा कोकलो ब्लॉक साना दानं
2: आला कोकलो मंजिल है भाई
0: दो दो इनके खनाई तोंग दी बेला के हम भाई कोक तो तिकरम बागी तो रचापुंग तो जंग ताबुक तो रचापुंग खनारना नहीं जोरा या पाई क्या अंके नंग तवाशा कोंग दो खाई दे दो बलाय हम बाय आओ इनके साना मुचुंगो जो तो खनाई तो नहीं ताको बकुक ते मारे की चिंग शंगनो तो मुंग नरो रचापुंग खनाना मुचुंग कांके नरो की हम सक माचे ने खातों में बांदा आरो नरो खनाई मन बाय ने फिया ताबुक इनके जंग कोकलोप खनालाई तो नरो की सीजा कोकलोप इनके पादी और जरा वो कोकलोप तांगशा नरो नो शावी खनारो वनम ताबुकनि कक्लबनि मुं ओंखा ककरिदि सिनाय ओंखा बरम गोनांजोग शर्मिला देव बर्मा ककरिदि नों थांलिया होनै आनि बोखानो दै सोबाया होनै यागौ याग बेरावै मकलरोवै मकल लगेव तंनाय मलनि उलो मल ककथाय रक्न मोथाक तनि नों नासिक मामां न' जत' सावानो कक रिदि नों खोनानाय होनै बुक जाकक थायरक या चाकनाय होनै आबहाय न' दे कायसा हर इमां बाय सोंजाक अ हरनि इमां रक नों बाय गोदाल जाक कक रिदि आन' या फारि नों थांगिया होनै खाख्लायो हकग्लबनो नरक खोनाथक जाबाय खोना कग्लबनि बमुं ओंखा ककरिदि सैनाय ओंखा बरम गोनांजोग शर्मिला देव बर्मा गोफादि ककदुगिया साखनाय ककदुगो साबदं हेलौ साइमालिया साबजानि ओंखा खोनाय मानलिया खरां एबा ककदुग गादोंनि थाखा ओंखे खाफांगिया खोराय पान्दाजों नरकनि सैजाक ककलब्रक जों खोनालाय दं दे सिगिरों लकनि सैजाक ककलब्रक नरकनां दांसा तांनै सावै खोनादो दङ आरो तो सैजागिया जे सिगिरों लकनि सैजाक रखाख्लाय नरक जतन खोनाथक जाक बायखेना ओंखे फायदि ककदुगिया साखनाय साबदं हेलौ हेलौ हेलौ आंखे तो खरां गतर खैनो साय दङ गैयांगबो खनाय दङ सादि सिनि मुंग रिगारि साबुंखा लाम सगनो न हेलौ

0: फैदा जरा कौतुक या सकना है कौतुक को सपतम नाइलना नरुबी हमजक मा चीनी खातों में पांडा हेलो हेलो
1: हेलो
0: दीपर का हम लाम सगो
1: दीपर का हम भाई ना
0: दो सिनी मुनी करी
1: यांग यांग सिनी सब लोग हिंदी नहीं सुबह
0: दो बोर जब मंखना नहीं
1: करेंगे बालों का है जेक नहीं करेंगे दीपर का हमारी वो उनका भाई ना उसके दीपर का हम
0: आओ दीपर का हम नौ नौ बो सादे बोर जब मंखना
1: नहीं गई सामने सुनाई मने रेडी उसे बेचता है यामु खनाई नहीं तो खबाई काम आए
0: आओ अब तो अंग सानाई इनको जे नाई कोल नहीं रोकनो तो दो शादी बोर जब मंखना नहीं ना दो बेलाइन हमारा खाई मानिए तो तीफानो जो तो खाई दौन रोकनो रचापन खाने बगे खाने हानी कौदो खाई बगे जो नो अंकई हजराव खादी अंकई नो खाई मानिएफनो जे खाई दौने मारे किचिंग सौ नरक बगे ओ खा तो रचापू टाकुक दिनी गबक मूंग खाना रजाक अंके खादी और रचापू

के खुना देता खुक बीर नी निखला तक जग मानी रचा पुंग सारा सा पॉइंट ऑफ मेगा हर्स एफ एम उजेन तो जो तो खुना तो ने मारा किचिंग शोंग नरक पुखना दी नरक नी हम जग माची निखा तुम पांदा खुना तो रचा पुंग

0: रोखलाई थुंगो सरसा पॉइंट ओक मेगा हर सेफ है मुझे तो जरा स्टूडियो आ सुख सा गांग बिनो ता नरोक ने हम जब माचे ने खातों में पांडा ना तो इतुले इनके पाइटी आ और जरा वो नए नए कोंग तो को शाबतो हेलो हेलो
1: हेलो दीपर का हम बाइन्या बेलाई
0: दीपर का हम नॉन बो लाम्सो को तकु रविंद्र ना
1: यांग यांग शिवचंद्र पारा रतनपुर ने रविंद्र देवरुमा बाई
0: दो सादे बोर चाप मंखना नाई
1: खनाखन बुही पाई हे न बाई
0: दो दो बोर चाप मंखना नाई सादे
1: नाई रख जतन बुही हो आज यारंग बस संग जतन न बुही हो हेड बाई
0: दो दो बोर चाप मंखना नाई
1: ए रसा मंख के हिंदी तो के न खना छिन
0: दो सादे
1: रसा मंख का तो के न बो मंख के अमता रक्षात
0: रक्षात
1: रक्षात नि कता और समता हात मिला के ने हाउ डू ने तेरे लड़की हमानी तो
0: हात मिला दो ना
1: हात मिला के ने हाउ डू ने
0: दो दो तों खान के अंखना रे नहीं दो तों के अंखना रे नहीं बलाय के ना हम बाय कोंग तुक देख रंग मा बागे among khata ko rabindra rachap mangkhana nai ne ha ko harka rakshat to ke ni rachap mangkai nai nai tongka kang khana ra nai

सरंगई थांगो जों जे सासामुंनो पानो आजायद्र बनो रंग्या जों जतनो सरंगमानि बिसिं दैनो रंगो रंगमानि बिसिं दैनो जों सिउ जों दमुंनो नगमांनो आचुगै दंगांगे जों मुंसा सिग्लाक मुंसा सायमानग्लाक नगनि नखर काकायनो जों सायमाननाय रुमदि बाक्सा नगो आचुगै दंगांगे नगनि फादार नखर कांगे मालखुं बायफानो थांनानै हिंगांगे मालखुंनि बाराव बोसोगनां आबस सायमानियां थां हाया दा तामनि हिंगे नगनि नखरनानि नांगियांगे तो सायमानिया बंनानि ककनो हाया दाबा हायनि बागैनो जों जेसा सामुं हुमुं रब जों खालायनायखाय जों सायमानिया जों सिया जों बड़क मनुष्यनि तमुं नमहाय हाया दाबा ओंखे फियाबा जों पैला गोदाल गोदालफोरो जेसा पानो सोरोंनानै थांखे जेसा पानो खालायनानै थांखाय जेसा पानो सिनानै थांखा ओंखे पैलायाव जों जाया रब उंगु जों सिया रब उंगु जेसो गुबुननि सामुं रग' रोंगै दंफानो सिउै दंफानो जों खालाया आसामुं गिसा पानो खालाया गंगे जों आरो पैला थांखा ओंखाय जों सियांग्राव रमदि दाबुक साखामनक रग' फानो थांखा कतर साखामनक दाबुक जिनि हास्तेनि जतन सिलाय कतर साखामनक रग' फानो थांखा जों थांना नांगिया साखामिया रग ओंगिया ओंखाय थांनाबो नांगिया हाया दाबा साखामिया रग ओंखा खायसे जों साखामनक रग' थांग' साखमां नायजागौ फियाबा जों थांना नांगिया ओंखायथ' जों नायजागिया सायमानानि बख' गिया ओंखे जों थांनानै नांगा ओंखे जों आतमसा गोबां मा बिल्डिं खदल खदल दङ जुदा जुदा साग नायमुं जुदा जुदा ब्रै रंनि वार्ड आलादा चेला रंनि वार्ड आलादा ओंखाय आब'न' गारिब बेमारिनि मुंगे आलादा आलादा वार्ड दङ खदल दङ जिराय रंनि खदल आलादा दङ बमा गोदा लोंनाय रंनि खदल गोबां मा खदल दं जों पैला थांगा ओंखे जों सायमानियां उतमुंनो जों वाइसाफानो थांगियाखौ थांनानै नांगियाखौ ओंखे जों सिया नंग्राव हाया दाबा हानि बागैनो जे सा सामुं हमबानो जों सिया नंग्राव सिगां थांगिया ख्लाया ओंखे जों सिया सायमानियांगौ हानि बागैनो जों सोरोंनाबो नांगौ सिनानिबो नांगौ सायमानानिबो नांगौ ओंखाय जों बाइके सिनाय होनगाखाय जों नगनि नखरै थांलायसख्लायखायनो जों सिउ सायमानो जेसा सामुं हमुं रगफानो

खोनालाइते रचापुंगरो खोनालाइते खोनालाइते पाइथागुनो जरा फाइ सपाइक्या जरा सावि दंखा दाबुक थांसि दिने हायनि बागै थांनानि नांसिनै दामनि हिखे दाबुक जिनि स्टुडेन्टनि जरा खखो दिबनि दामनि दामै सति नैजिबा ओंदिनो थांखा आंगेते सति बा थंसिव ओंखे पाइथागु फाइदि दाबुसन जरा मानमानि हायनो हाय ककबरक ककतुमा बबाक्रक नायलाय फिनाय राष्ट्रबक्रक द्रौपदि मुर्मुते मंत्री बक्रम नरेंद्र मोदी तीन सिक्किम हास्टे संजामा सालनो रगै आरो नि लुकुरक नो खाकाहाम या फारका राष्ट्र बक्रग्याक चु सिपी राधाकृष्णन तीन सिक्किम ग बेरायना थांखा राष्ट्र बक्रग्याक चु तीन गेंगटक सिक्किम हास्टे संजामा सालनो रगै संसजाक पांडाव मानजागानो कायबा हाक्तर बेरायमा उलो बखाक मंत्री बक्रम नरेंद्र मोदी नेदरलैंड्स थांगै सगैका बिरगुं खोलाव बनो लामसका नेदरलैंड्स नि बुइहा मंत्री टॉम बारेनसन हास्टेवते कायसा इंडिया रिजर्व बेटालियन स्नामतिसाना गोसिमुं रखा केन्द्रनि सरास्त्र ककजोंलाय नकमिया केन्द्रनि सरास्त्र नायखुंनि याकचु तांग्रा संतोष कुमार हास्टे सचिव अक्रानो अककतुमानो रखा खना त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन बाय नायकलजाक तपन मुकुमु अरनि नकआउटे क्रिकेट बादायलायमुंनि थोंमुंग कस्मोपलि

0: संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्र पत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्र पत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल

0: है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितम्बर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और योग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था।

0: की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: আপনারা শুনছেন 101.6 মেগাহার্জ FM উজ্জয়ন্ত। এখন শুনবেন সংবাদ শিরোনাম। মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডক্টর মানিক সাহা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তার 4